0: ये यमगांग आ
1: नेगो
2: ओइ लचराउ कांगा
0: किता पे यांगम
2: ओन जरा यिंग नेगो
0: के या किराम ननो नना सर्विसेस पीपीए
1: हेन अयारे इबुगे निकितारे नन कांगा नक्टोरो पिया के ननो आ देइता के नकोन मार्केटिंग एट ppa.top.kei
0: के मेसेज नको नना फेसबुक पेज पीपीए ए ब्रॉडकास्टिंग एंड पब्लिकेशंस अथॉरिटी के पीपीए मेरी एफएम 89.9 के कुबोनी कोना ने बंदेता के नको रेंते तारे फोन नंबर ए ओनो वतेनुआ किया देनुआ आकिया तो वाना निमे वाकिया के निपुन रोको नना काउंटर पीपीए पाइरी कि निकारी ना तंग तंग यम केम कांगा आने नना सचेस्टेन बॉक्स पीपीए अरे एकता रोया इपुकिन
1: वेपन